देवानंद कल्पना कार्तिक शीला रमणी जॉनी वॉकर यात अजून एक क्लब सॉन्ग होतं दिल से मिला के दिल प्यार प्यार कीजिए कोई सुहाना इकरार कीजिए.

ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।